0: जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट न होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
2: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
2: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
0: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया। श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट

0: मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहाँ आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान की संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून

0: लिखता है बाबू मोदीशाय। तमिलनाडु में टीवी के की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा, असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है अव्वल तो ऐसा यार की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर यह है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मनीष। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Kerala. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. 3 Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilagavetri Kadagam or TVK has emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. TMC trailed far behind, managing to win 80 seats in the first election after special intensive division of electoral rolls in the state. Out of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Our correspondent reports, Congress and Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPIM clinched 1 seat.
3: With a vote share of nearly 45.84%, the BJP has won 206 seats in West Bengal. Meanwhile, the Trinamool Congress's vote share dropped by almost 8 percentage points to 40.8 compared to the 2021 election when it bagged 48.5% votes. Several heavyweight leaders of the Trinamool Congress faced defeat. In this election, the BJP not only swept North Bengal but also gained a firm hold over almost all the South Bengal. Mamata Banerjee suffered a crushing defeat in her constituency Bhavanipur. Shubhendu Adhikari defeated Banerjee by more than 15,000 votes. Adhikari also secured victory in the Nandigram seat. Kollan Laha reporting from Kolkata.
2: For the first time since 1972, West Bengal appears set

0: अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने इस संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन सांस्कृतिक आदान प्रदान खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तोलाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तोलाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारी प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तोलाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां

0: तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसफ विजय की पार्टी तमिलका वेट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम परलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
4: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
5: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5

0: आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के दो पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
1: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का नौवां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमेरिका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ही अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जरूर, हमें भी बहुत दिनों से श्री शंकराचार्य जी के बारे में जानकारी पाने की इच्छा थी।
1: उनके नाम स्मरण से ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
2: हाँ हाँ, जैसे जैसे भाव है वैसे वैसे भक्ति है।
0: हाँ बहन जी, समझाइए ना।
2: जगतगुरु श्री शंकराचार्य जी कलयुग के ऋषि देवांश संभूत थे। ये भगवान शंकर के अवतार थे।
1: देवांश संभूत माने क्या है?
2: अंदरे देवांश स्वरूपिगळु मत्तु अवतार पुरुषरु एंदर्थ।
0: रोंगटे खड़े होना माने क्या है?
2: ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರೋಮ ರೋಮಗಳು ಉದ್ವೇಗದಿಂದ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವುವು.

0: पाद ने शंकर को अपनी सारी विद्या देने सिखाने लगे। जाने के पहले गुरु ने शंकर से कहा कि वैदिक धर्म की पुनः संस्थापना करने के लिए शंकर के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। यहाँ से काशी जाकर शंकर भगवान का दर्शन पाकर आगे का काम करो। इतना कहकर उन्होंने देह त्याग किया।
1: देह त्याग वेंदरे मरण होंदुवुदु एंदल्लवे?
0: हौदु, आगे गुरु के आज्ञानुसार वाराणसी पहुंचकर मणिकर्णिका घाट के निकट आवास रहने लगे।
1: ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ ಎಂಬುದು ಕಾಶಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟ್ಟದ ಹೆಸರಲ್ಲವೇ?
0: ಹೌದು, ವಹಾ ಕೈ ಪಂಡಿತೋನ್ಸೆ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಕರ್ಕೆ ಪರಾಜಿತ್ ಕಿಯಾ, ವಹಾ ಕೈ ಯುವಕ್ ಉನ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯತ್ವಕೋ ಗ್ರಹಣ ಕಿಯಾ, ವಹಿ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಏಕ್ ಶವ್ಕೋ ರಖಿ ಮಾತಾ ಭವಾನಿಕಾ ಬಿ ದರ್ಶನ್ ಹುವಾ.
1: ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಂಡಾಲನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರರ ದರ್ಶನವೂ ಸಹ ದೊರಕಿತಲ್ಲವೇ?
0: ಹಾ ಹಾ ಜರೂರ್. तब शंकर ने विश्वेश्वर भगवान एवं भवानी माता को प्रणाम कर बद्रिकाश्रम जाने का निश्चय किया। रास्ते में कई पंडितों को शास्त्रार्थ से हराकर अनेक तीर्थ स्थलों का दर्शन कर बद्रिकाश्रम पहुँचे।
1: बद्रिकाश्रम भारत के उत्तर के हिमालय में स्थित अत्यंत प्रसिद्ध हिंदुओं का पुण्य क्षेत्र है ना?
0: हाँ हाँ, वहाँ तप्त कुंड में नहाकर नारद कुंड में पड़ी हुई नारायण मूर्ति को बाहर निकालकर वही फिर से बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की।
1: बहुत श्रेष्ठ काम किया ना?
0: कई पंडितों को शास्त्रार्थ में हराकर वेदों की पताका चारों तरफ फहराने लगे।
1: इन्होंने बेली के प्रभाकर ब्राह्मण के 13 वर्ष के पुत्र को वेदाध्यान का ज्ञान प्रदान किया।
0: हाँ, आगे वो शंकराचार्य का शिष्य बनकर हस्तामलक नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कई अद्भुत चमत्कारों से सबको शंकर ने विस्मित किया। कई बाधाओं का सामना कर भारत की चारों दिशाओं में 4 मठ एवं मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकानाथ, ये 4 मंदिर है। अपनी 32 वर्ष की आयु में श्री केदारनाथ में योग समाधि द्वारा अपना शरीर त्याग कर दिया। अच्छा, समय हो गया है, फिर मिलेंगे।
1: काफी विषय समझा दिया, धन्यवाद।
2: धन्यवाद बहन जी।
3: ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷಾ ಭಾರತಿ ವಿಶೇಷ ಹಿಂದಿ ಪಾಠ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಳಿದಿರಿ.
4: ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು SV ವೇದಾವತಿ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ನುಸರತ್ M ಹಾಗೂ ಅರ್ಷಿಯಾ Z.

0: की सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार। नेहा आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार सोनाली जी और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है
1: भाई? हालचाल तो देखिए गर्मी सब जगह है तो गर्मी से हाल बेहाल है। तो हमने एक तरीका निकाला है।
0: कैसा
1: हमने
0: तरीका?
1: सोचा है कि देखिए अगर हम गर्मी में गर्मी की बात ना करें तो गर्मी कम लगती है।
0: अच्छा
1: क्योंकि गर्मी में गर्मी की ही बात करते रहेंगे तो अगर हम अंदर भी बैठे तो ऐसा लगेगा बाहर तो गर्मी है, अब अगर बाहर गए तो गर्मी लगेगी, अब धूप लगेगी, अब लू लगेगी। उसकी बात मत कीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, परेशानियों के बारे में मत सोचिए।
0: परेशानियों को हमें बाय बाय कहना है, अलविदा कहना है और अच्छी अच्छी बातें करना है ताकि ये गर्मी से हमें राहत मिल जाए और ठंडक एहसास हो जाए ना।
1: तो ठंडे एहसास के लिए भी हम सखी सहेली भी सुनते हैं क्योंकि ठंडे ठंडे ऐसे मतलब एक ताजगी का अनुभव मिलता है क्योंकि बहुत सी बातें हमारे साथी भी करते हैं इसमें और हम भी करते हैं, अलग अलग विषय लेकर आते हैं
0: और हमारे साथी इतने सुंदर विचार लिखकर हमें भेजते हैं ना कि सच में दिल बाग बाग हो जाता है।
1: हाँ और इसी खुशबू से हम महक उठते हैं और ऐसा लगता है कि बस ठंड तो कहाँ है, ठंड ही यहाँ है ऐसा लगता है, गर्मी तो कहाँ है,
0: गर्मी है ही नहीं, है ना
1: जी।
0: वैसे आज के जो विषय है घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड, यानी आज की जो युवा है युवा वर्ग है उनका ऐसा मानना होता है कि भी घर का खाना है उस वक्त मम्मी ने अगर घी भी दे दिया या कुछ अच्छी से मिठाई खिला दी तो कहें कि नहीं नहीं नहीं मैं तो अभी डाइट पे हूँ। और जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो पिज्जा बर्गर और सब नूडल्स वगैरह खाते हैं तो घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड वाला ये फंडा उन्होंने अपना लिया है।
1: तो इस पर इनकी क्या विचार है हमारे श्रोता वो बातें तो कहेंगे, साथ ही बातें हल्की फुल्की में आज हमारे श्रोता अपने विचार बता सकते हैं। पुराने जमाने के जन्मदिन किस तरह से मनाए जाते थे, उनका कोई जन्मदिन अगर उन्हें याद हो या उन्होंने मनाया हो तैयारी की हो तो ये सारी बातें हमसे साझा कर सकते हैं।
0: क्योंकि आजकल जो जन्मदिन मनाते हैं ना नेहा वो बहुत ही अलग होते हैं। आजकल तो इन्हें शिशुओं के हर महीने के भी जन्मदिन मनाते हैं।
1: हाँ
0: साल भर जन्म और उसमें अलग भले ही वो शिशु को पता ना हो पर केक लाई जाती है उसे कुछ समझ में आए ना आए पर हम सेलिब्रेट करते हैं। पर वो जो सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे वो कैसे थे और आपके कैसे होते थे जन्मदिन, इस विषय पर आप हमें लिखकर भेजिए
1: जी। और उद्यमी महिला में हम आज याद करने वाले हैं शहनाज हुसैन को जो हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उनकी कंपनी रही, उन्हें हम याद करने वाले हैं। और मुहावरों की दुनिया में हम कौन से मुहावरे की बात करेंगे आज?
0: घर की मुर्गी दाल बराबर।
1: तो ये वही जंक फूड वाले मामला ही हो गया।
0: हाँ,
1: ऐसा
0: बिल्कुल वैसे ही हो गया है। और जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स की भी बात चलती है तो हम जो चंदन है, तुलसी है, एलोवेरा है, इन्हें हम इग्नोर करके हम जो है ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं।
1: केमिकल वाला चंदन लेके आते हैं जिसमें सिर्फ चंदन की खुशबू हो
0: और पाउडर ही होता है। और साथ ही आज एक खास दिन है, विश्व अस्थमा दिवस है
1: जी,
0: तो उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। पर अब क्या करना है, हमें
1: गाने सुनेंगे और क्या करेंगे
0: तो सुनते हैं गीत।

0: ये गाना सुनते सुनते ऐसे ठंडी ठंडी वादियों का आनंद आने लगता है, क्योंकि वहां याद आ जाती है ना, जब सीन भी याद आने लगता है कभी कभी गाने का।
1: सचमुच हम नेपाल पहुंच गए थे।
0: हाँ, तो ठंडी ठंडी हवा ऐसे लगने लगी, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आ रहा था।
1: पर जो जो ठंडी होती है ना नेहा, ये जो जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें परेशान करती है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे आज विश्व अस्थमा दिवस है, तो पूरे विश्व में अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा के कारण, लक्षण और बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देना है, ताकि लोग समय रहते इस बीमारी को पहचान सके और उचित इलाज करा सके।
0: जी सोनाली जी, और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता हुआ, धूल धुआं और जीवन शैली भी जिस तरह से हमारी बदल रही है, उसके कारण भी अस्थमा एक गंभीर समस्या बन जा रहा है। क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में ये रोग दिख रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है उन्हें। और देखा जाए तो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है अस्थमा, और व्यक्ति की श्वास नलिका में इसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है। और अस्थमा के रोगी को आमतौर पर बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
1: और कई बार ऐसा होता है कि नेहा मौसम परिवर्तन है, फिर धूल है, फिर धुआं है, तेज गंध, ठंडी हवा या किसी प्रकार के एलर्जी के कारण भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। यदि समय पर उपचार ना मिले तो ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने

0: लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
1: हाँ, क्योंकि वाहन से जुड़े प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या तंबाकू का सेवन, घरों में जो धूल जमा होती है, ये सब इसके मुख्य कारण है जो इसको ट्रिगर करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अस्थमा की संभावना बढ़ जाती होने की। और अगर आज के दिन की हम बात करें, विश्व अस्थमा दिवस, तो इस दिन पर विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं, कई शिविर लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर जहां मुफ्त जांच की जाती है और अस्थमा से किस तरह से बच सकते हैं ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती है।
0: और इन शिविरों में इनहेलर से कैसे सांस ली जाती है उसका भी उपयोग हमें सिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ही अस्थमा होता है, यानी सांस संबंधी बीमारियां होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके घर में जो मौजूद लोग हैं, बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ धूम्रपान करते तो आप ही को होगा, आपके पूरे परिवार को भी अस्थमा हो सकता है।
1: अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान ये भी हो रहा है, क्योंकि वो जो धुआं है वो उनके शरीर में भी जा रहा है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता कहते हैं। और इनहेलर वगैरह की जानकारी तो उन्हें दी जाती है, साथ ही अस्थमा से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां कर सकते रख सकते हैं ये भी बताया जाता है। जैसे कि धूल और धुएं से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए जिन्हें इस तरह से बीमारी है। घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि धूल ना ज्यादा हो। धूम्रपान से बच सकते हैं, और कोई दूसरा अगर धूम्रपान कर रहे हैं जैसे कि आपने बताया तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। पर इसके अलावा नियमित व्यायाम कर सकते हैं, योग प्राणायाम जब करते हैं तो फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो अस्थमा की जो रोकथाम है उसमें काफी मदद मिलती है, क्योंकि सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। पौष्टिक भोजन अगर हम करते हैं और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं तो भी बीमारी से बचाव में ये सहायता करते हैं हमारी।
0: और एक जरूरी बात है नेहा, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही पर हम बस ऐसे कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, आप ले लो, पर ऐसे नहीं है, उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कि एक दो बार ठीक है घरेलू इलाज कर लिया तो ठीक है, पर इसे इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है कि बुखार भी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि निमोनिया वगैरह हो सकता है या और भी गंभीर रूप की बीमारी हो सकती है, तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई लोग उचित सावधानी और उपचार के साथ सामान्य जीवन भी जीते, अगर उन्होंने टाइम पे उपचार ले लिया ना तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसलिए अस्थमा जो है डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।
1: जी, तो आज के दिन का यही तो संदेश भी है सोनाली जी, कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, प्रदूषण कम करें और अपनी सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी पर काफी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर जो जो चीजें अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से बच सकते हैं और आराम से रह सकते हैं उसके साथ भी।
0: एक हमारे साथी ने भी लिखा है इस विषय में कि अस्थमा जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह के सभी श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे हैं कि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी असर देखने को आता है। इसके रोकथाम, उपचार और सचेत रहने के लिए आज का दिन अर्थात ये दिन मनाया जाता है। तो यानी कि अगर हमें जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर में दादाजी वगैरह को, दादी को, नाना नानी को अगर किसी को अस्थमा है तो हमें समय रहते उपचार लेना चाहिए, ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और अभी हमें वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि वक्त हो चुका है एक अंतराल का।

0: तो जब अच्छे अच्छे गीत सब सुनाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस खो जाओ थोड़ी देर तक. लेकिन खो जाएंगे अगर, तो अपना लक्ष्य कैसे पाएंगे? सुना लीजिए,
1: हमें अपने लक्ष्य की ओर जागरूक होकर ध्यान रखना चाहिए नेहा. अब ये गाने जो है ना, ये घर में सुनते हैं तो मजा आता है कि भाई बैठे बैठे आग लग गई तो ठीक है. पर यहाँ हमारा लक्ष्य बिल्कुल
0: आंखों पर, आपने अपना लक्ष्य बिल्कुल नक्श पे हमारी नजर होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम.
1: और ऐसी कुछ महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य में उन्हें अपार सफलता भी मिली. और आज उनकी मेहनत के कारण इतना उसका फल इतना अच्छा है कि हम भी उनके प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं.
0: हाँ, और उन्हें याद करते हैं उनके काम के लिए. हो सकता है इसकी इसमें कितनी स्ट्रगल रहती है, कितना कुछ उन्हें करना पड़ता है इस सफलता को पाने के लिए, और इसके लिए ही हम उनके याद करते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही सफल नहीं हो गई है, उसके पीछे कितना कुछ उन्हें करना पड़ा. तो आज हम याद करें शहनाज हुसैन को.
1: और भारत में उद्योग जगत में महिलाओं की सफलता की जब भी चर्चा होती है तब शहनाज हुसैन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने सौंदर्य और हर्बल उद्योग में ऐसी पहचान बनाई जिससे भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया था. और उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था. बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और रचनात्मक स्वभाव की थी. उनकी शिक्षा अच्छे वातावरण में हुई, कम आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा. उस समय महिलाओं का व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई.
0: और उन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल में विशेष रुचि थी, और इसी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी थेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त किया. लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन जैसे शहरों में सौंदर्य विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया. और जब शहनाज हुसैन ने अपने कार्य की शुरुआत की थी तो उस समय बाजार में ज्यादातर रासायनिक सौंदर्य उत्पादों का बहुत प्रयोग होता था, और इनसे त्वचा को तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होता ही था. तो उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति को पहचाना और हर्बल उत्पादों को अपनाने का उन्होंने

0: निर्णय लिया और ऐसे उत्पाद उन्होंने तैयार किए जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता था, जैसे चंदन, हल्दी, गुलाब, एलोवेरा, केसर और विभिन्न जड़ी बूटियां इसमें शामिल थी, जिससे ये जो उत्पाद थे, क्योंकि ऐसी चीजों को इस्तेमाल करती थी, त्वचा और बालों के लिए काफी अच्छे माने जाते थे और धीरे धीरे लोगों का विश्वास उनके उत्पादों पर बढ़ने लगा और उन्होंने शहनाज हर्बल्स की स्थापना की।
1: और शहनाज हुसैन ने अपने घर से छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया था, धीरे धीरे उनका कार्य बढ़ता गया और उन्होंने शहनाज हर्बल्स नामक कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी है। उनकी कंपनी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और एशिया के अनेक देशों में भी अपनी पहचान बनाई है और उनके सौंदर्य केंद्र और उत्पाद विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। एक भारतीय महिला ने आयुर्वेदिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया, ये महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है। और शहनाज हुसैन ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया।
0: बिल्कुल, तो कई बार ऐसा हम कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, उसी तरह से अगर एक महिला सफल हुई तो अपने साथ कई महिलाओं को सफल होने का मौका भी देती है और साथ ही उनकी ओर देखकर भी बहुत सी महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं। तो उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस प्रशिक्षण दिया, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी और बहुत सी महिलाएं आज भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेकर सफल व्यवसाय चला रही हैं। और महिलाओं को उन्होंने यही संदेश दिया कि घर तक सीमित ना रहो और अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है आपकी, उसको पहचानो। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सफल हो गई और ये सारी चीजें कर रही हम कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई संघर्ष तो होता ही है, तो उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआत में लोगों को हर्बल उत्पादों पे उतना भरोसा नहीं हुआ करता था, कहते थे कि भाई पता नहीं कैसा रहेगा। आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर हर चुनौती को उन्होंने पार किया। फिर धीरे धीरे उनका नाम सफल महिला उद्यमी की ओर बढ़ता गया, प्रसिद्ध होती गई और कई महत्वपूर्ण गुण थे उनके, जैसे कि आत्मविश्वास
1: और कठिन परिश्रम, नई सोच, आयुर्वेद पर विश्वास, ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया।
0: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ही भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को नई पहचान दी और रासायनिक उत्पादों की बजाय इन उत्पादों को अपनाएं और इसके लिए प्रेरित भी किया। और अब देखा जाए तो हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद कितने बढ़ रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ाने वाली कौन है? शहनाज हुसैन।
1: शहनाज हुसैन जी, तो उन्हें हम याद करते हैं और हम भी अपनी सखियों सहेलियों को कहेंगे कि इन सब जो महिलाओं की जब हम बातें करते हैं तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अगर मन में कुछ इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुनना चाहिए।
0: हाँ, मन में इच्छा तो हो गई है,
1: सुनते हैं।

0: तो ऐसे गोरे गोरी बातें कर रहे थे हम गोरे होने की बातें
1: हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि देखिए रंग जिसको जैसे जो मिलता है उस रंग को अगर अपनाया जाए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा मन में सोचने लगते हैं, विचार कर लेते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट अपनाया जाए जो त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं,
0: यानी कि
1: या
0: अगर सर्दियों का मौसम है तो
1: हाँ
0: हमारे मॉइस्चराइजर यो घर के भी इस्तेमाल कर
1: हाँ
0: सकते हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा लें, और कुछ लोग रात को अपना घी लगा लेते हैं, उससे भी
1: जी
0: सॉफ्ट हो जाती है स्किन। और बहुत सारी महिलाओं को है ना, जो हमें नहीं मिला होता उसका गम होता है कि भाई
1: हाँ
0: हमारा रंग तो सावला है, तो क्या हुआ, सावले रंग के लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं। एक अगर हम अच्छे से रहे, एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, तो कोई भी रंग रंग कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है।
1: अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम हैं उस तरह से अगर हम खुद को अपना लें, कि जैसा जो चीजें नहीं बदली जा सकती उसको अगर उस तरह से अपना लिया जाए, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व में हम काफी काफी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो वहां तो हम अच्छे की ओर जाते जाएं। लेकिन जो जैसे त्वचा है, त्वचा का कोई रंग हो या कुछ, मान लीजिए कि कभी किसी के मुहासे ज्यादा निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं, तो वो अब उसकी त्वचा तो अच्छी है, वो क्यों नहीं निकल रहे हैं इसके मुहासे, तो इस तरह की चीजें ना सोचकर अपने आप को अपना लेना चाहिए ना।
0: और अब हमें
1: जी,
0: ब्रेक
1: ब्रेक
0: लेना है,
1: लेना चाहिए
0: तो लेते हैं ब्रेक।
1: जी।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली,
1: पहेली।
0: और हमारे श्रोताओं के हैं बहुत सारे कमेंट्स। तो जो मुहावरों की दुनिया, इसमें जो हमने लिया है मुहावरा, घर की मुर्गी
1: दाल
0: दाल
1: बराबर। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये हमारे साथियों ने भी लिख भेजा है, बहुत से कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं और सारी चीजें बता दी है उन्होंने कि क्या क्या अर्थ होता है।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर आपको कितना भी मान सम्मान मिले पर घर में कोई इज्जत नहीं मिले, तब ये कहावत कही जा सकती है। अक्सर सबके घर में पतिदेव का यही हाल होता है, मुझको छोड़कर। आपने देखिए कितना सेफ गेम खेला है ना।
1: हाँ, कमेंट्स है ना बाहर ही कमेंट सारा।
0: हाँ, तो
1: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने ही आदमी की कद्र ना होना। जब कोई मूल्यवान चीज या व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसे साधारण या कम महत्व का समझने लगते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमेशा पास में होती है उसकी कीमत कम समझी जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में कितना भी अच्छा हो खाना, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंक फूड ही पसंद आता है, ये भी उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए कहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भी बच्चों को कह लीजिए, उनके परिवार वालों को उतनी वैल्यू नहीं होती उनकी। बाहर के लोग कहते हैं कि अरे कितना ज्ञान है इन्हें और इनके ज्ञान से हमें फायदा होगा, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पास क्या है। तो ये कहावत हमारे सभी के लिए ये लागू होती है, तो हमें अपनों को भी महत्व देना चाहिए। अब जैसे हमने प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो हमारे पास में घर में इतना खजाना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर भी हम जो है ना बाहर के प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें कलर और फिर पैकिंग उनकी जबरदस्त होती है और उसमें खुशबू जो अलग सी आती है, तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं और हम अपनी चीजें जो अपने पास में है उन्हें हम इग्नोर कर बैठते हैं।
1: वही चीज जैसे हमने अभी भी कहा था कि हम अपने पास जो चीजें हैं उसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, सामने वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है वही सामने वाला हमारी उन चीजों को देखकर वैसा ही सोच रहा हो कि इसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, कि इसके चेहरे की बनावट अच्छी है। जैसे हम किसी का रंग देखकर सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा हो देखकर हमें कि इसके चेहरे की बनावट कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या एक दूसरे की चीजों को देखते रहना और अपने पास जो चीजें हैं उसका महत्व न समझना ही इस मुहावरे को बिल्कुल सार्थक करता है, कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इस मुहावरे का मूल मतलब है कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं, इस कारण ही से ही लोक में इस मुहावरे का चलन है। ये सच भी है क्योंकि घर के लोगों से लोग सुपरिचित होते हैं जबकि बाहर के लोगों की कद्र करते हुए अच्छा खासा भाव देते हैं। इस दृष्टिकोण से घर के लोगों में स्वयं के प्रति हीन भावना भी पनप सकती है, इसके ज्ञान से अनभिज्ञ लोग ही ऐसा करते हैं।
0: तो कई बार ऐसे होता है ना कि नेहा के अपने घर में जो बच्चे हैं उनमें अगर कुछ कला है, उनमें अगर कुछ प्रतिभा है, तो हम उनकी तरफ अनदेखा कर देते हैं और सामने हम टीवी में बैठे हैं कोई बच्चे गा रहे, तो हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा गा रहा है। अगर हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर वो कला है, वो अच्छे से गा रहे हैं या बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम सजाएं सवारे, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो वो भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकते हैं।
1: तो कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि हम ये सीख लें या हम ये करना चाहते हैं, तो हम उन्हें डांट देते हैं और फिर सामने जब टीवी पे आप जैसे कह रहे हैं कुछ चलता रहता है, तो हम कह रहे हैं देखो ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी उम्र का है, कितना अच्छा गा रहा है। तो अब उसने बच्चे ने भी शायद कभी बोला हो कि मुझे गाना सीखना है, तो हमने उसे डांट के कह दिया कि तुम पढ़ाई करो,
0: चुपचाप बैठ जाओ।
1: लेकिन हम तारीफ उसकी कर रहे हैं, तो वो भी हीन भावना होती कि हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ में नहीं बढ़ने मिल रहा है। हमारे एक साथी ने भी तो ऐसे ही कुछ कहा है, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते, दुखती रख पर हमारे हाथ रख दिया, ऐसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं जो मैं धर्मपत्नी और बच्चों को बताकर सावधान करता हूँ, जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विषय में हो, उस समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। वही साइबर क्राइम की कोई घटना किसी न्यूज़पेपर में छपी हो या सखी सहेली प्रोग्राम में बताई जाए, तो सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी बड़े ध्यान से बच्चों को समझाती है, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके विषय में तो मैंने पहले ही सबको सावधान किया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए हमारी शिकायत हमसे ही हो रही है, तो
0: हमें ही घर की मुर्गी दाल बराबर बना दिया।
1: हम तो रोज आते भी, हम लोग घर के ही हैं। तो कोई ऐसा आप हमसे मतलब कहना नहीं चाहिए हम लोगों को।
0: एक साथी ने लिखा है, घर का बना भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट हो, कम पैसों में बना हो, तो भी घर का ही है, वही बाहर का भोजन बहुत अच्छा होता है, 10 या 20 रुपए की

0: रोटी जो है वो और 250 का सूप, महंगी सब्जी हमें अच्छी लगती
1: हाँ, स्वाद बढ़ जाता है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो नए नए बर्तन बाहर आते हैं, नई थालियां, नई चमकते चम्मच, कांच के गिलास, जब मेहमान आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो इससे तो हम भी सहमत हैं कि वो सारी चीजें तो बस रखी ही मेहमानों के लिए जाती है।
0: तो फिर इंतजार करती है गृहिणियां कि कब मेहमान आएंगे तभी नई वाली क्रॉकरी निकालेंगे।
1: अब ऐसा लगा गृहिणियों से ज्यादा तो घर के लोग उसका ध्यान रखें कि कब ऐसा हो कि कोई तो आए तो ये इन थालियों में हमें भी खाने मिले, है ना।
0: पर अब गाना सुन ले,
1: बिल्कुल
0: सुनते हैं गीत।

0: और घर की मुर्गी दाल बराबर जब बात हो रही है तो क्यों ना बात हो जाए घर पर डाइट फूड और बाहर के जंक फूड की।
1: ऐसा ही होता है ना, जब
0: हाँ
1: मम्मी कहती है कि भाई लड्डू खा के जाओ या फिर कुछ अच्छी मिठाई बनाई खा के जाओ, तो बच्चे
0: हाँ
1: कहते कि नहीं हम डाइटिंग पे हैं, हम नहीं खाएंगे, कितना घी डाला है उसमें और
0: हाँ
1: कितना सारा बटर डाला है, कितना सारा उसमें शक्कर या गुड़ डाला है, तो हम नहीं खाएंगे। और फिर बस घर में बस हम उबला हुआ खाएंगे, उबला हुआ उबली हुई सब्जी खाएंगे,
0: हाँ
1: उबला हुआ खाना खाएंगे, और थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि फोटो आ रहे कि दोस्तों के संग बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो
0: कोल्ड
1: ये
0: ड्रिंक पी
1: घर घर
0: रहे
1: की कहानी
0: हैं। हाँ घर की कहानी तो होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बाहर ही खा लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपने टिफिन दे दिया तो फिर बहुत ही बड़ा ऐसा

0: मजाल आपके टिफिन को लेके जाता हाथ से। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए हैं वैसे तो हम लोग, और कहते हैं कि कम तेल घी का घर में जो भोजन बनता है, हल्का भोजन बनता है, ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे आप कितना तेल डालती है, कितना घी डालते हैं घर में खाने में, ऐसा हम बोलते हैं, जबकि घी अच्छा होता है खाने के लिए।
1: पर वो बच्चों को ऐसा लगता है ना कि घी से हमारा वजन
0: मोटे हो जाएंगे,
1: हाँ।
0: बर्गर से वो पतले होते जाते हैं। तो कहते हैं कि फिटनेस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब आज से हम एक ही रोटी खाएंगे, दूसरी रोटी नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन फिर बाहर जाते हैं तो फिर सारी बातें कहती है कि एक दिन पिज्जा खाने वाले, यानी वो पूरा एक हफ्ते का निक्की निक्की हो जाता है।
1: यानी हम एक दिन सिर्फ वो चीटिंग करते हैं,
0: हाँ।
1: कि एक दिन हम बाहर का खा लेंगे पर फिर बाकी दिन हम घर का नहीं खाएंगे, जबकि मम्मी का प्यार दुलार भी होता है उसमें, आत्मीयता होती है, और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ के, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
0: मम्मी पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है, जिसको जो पसंद है वो सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है।

0: आत्मीयता होती है और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ की, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
1: और पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है कि जिसको जो पसंद है वो सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है, किसी को तिकोना पराठा पसंद है, किसी को चौकोर पराठा पसंद है, तो उसके हिसाब से अच्छा ये साइज भी बदलते हैं, शेप भी बदलते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बस वही है कि नहीं, आकर्षक पैकिंग में जब बाहर का खाना मिलता है, स्वाद अच्छा लग रहा है, फैशन भी होता है ये सब चीजें कि अगर अरे तुम तो घर का ही खाना खाते हो, इस तरह से अगर बोल दिया जाता है तो वो एक फैशन के साथ में जाने के लिए भी बाहर का खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: और है ना क्या होता है कि घर का खाना जब हम डब्बे में डाल के देते हैं तो कुछ समय में ठंडा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है ठंडा हो जाता है, पर बच्चों को वही लगता है कि वो गरम गरम खाना है तो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा, पर उसके पीछे जो है कितनी सारी माओं की मेहनत होती है। और फिर उसमें ये बात है ना कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो बाहर घर में हम कहेंगे कि हमें मैदा नहीं खाना है और बाहर जाके हम मैदे की बनी रोटी खा लेते हैं और ना जाने ऐसी कितनी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल, आमतौर पर अगर हम देखें तो घर में जो खाने बनते हैं सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, पारंपरिक भोजन बनता है। और कई बार ऐसा होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से त्योहार होते हैं, अलग अलग मौसम के हिसाब से भी गर्मी है तो ये चीज तो बनेगी ही बनेगी, आम पना बनेगा, आम का रस बनेगा, या ठंडी हो गई तो ये गुड़ वाली चीजें बनेंगी,
0: गोंद के लड्डू बनेंगे,
1: लड्डू बनेंगे। तो इस तरह से जो वो होता है ना, क्योंकि वो मौसम को ध्यान में रखकर परंपरा हमारी इस तरह की रही है,
0: यानी हमारे शरीर को जितनी जैसी जरूरत है उस हिसाब से वो डिजाइन किए गए हैं। है ना कि उस त्योहार से जुड़ी हुई कितनी सारी है ना सांस्कृतिक महत्व भी है उसका, कि वो फसल उगती है नहीं नहीं तो हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है, तो उससे बनाए हुए व्यंजन हमें खिलाए जाते हैं, बनाए जाते हैं।
1: तो अगर हम घर का भोजन खाएं तो ये सारी चीजें भी मिलती है, बाहर तो सारी चीजें एक ही मिल रही है हमेशा, वो मिल रही है, आप जब चाहें वहां जाके लड्डू खा सकते हैं, आप जब चाहें वहां जाके कुछ भी खा सकते हैं, गर्मियों का भोजन आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दी का गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि पैकेट बंद आपको आम का रस 12 महीने मिल सकता है, लेकिन वो रस तो नहीं
0: होता है वो। और फिर उसमें ना विटामिन जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ में उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, पर हम ये हाथ कह के हाथ ऊपर कर देते कि नहीं भाई हम बहुत तेल घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हम तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, पर हम बाहर
1: समोसे खाएंगे बाहर। वो कई बार बेक्ड समोसा बोल के भी खाते हैं कई बार, बट रहता वो मैदा ही बेक्ड होता है
0: और उसमें इतना सारा मोयन डला होता है, क्योंकि मैदे को अगर बेक भी करेंगे तो उसको जो कुरकुरा बनाने के लिए उसमें अगर मोयन ना डला होगा तो वो ऐसा कुरकुरा या स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं।
1: तो ये कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे या बड़े जो भी हैं जिन्हें भी ये शौक है कि घर पे डाइट करते हैं और बाहर जाते ही साथ वो तुरंत वो अपनी सारी डाइट को भूल जाते हैं, एक दिन के लिए बोलते हैं लेकिन वो पूरा एक दिन आपका पूरा एक हफ्ता की डाइट जो है बराबर कर देता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। और घर में भी जो खाना दे रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्यों ये बाहर का खाना ज्यादा खाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से परोस सकते हैं, ऐसे नहीं कि बस ये कटोरी में दाल डाली और ये, तो अगर थोड़ा सा सजा कर दे दें तो उन्हें अच्छा लगेगा शायद, हो सकता है इस वजह से। और अगर साथ में बैठकर हम खाते हैं तो भी एक अलग सा एहसास होता है। तो इस तरह से कुछ चीजों में हम भी बदलाव कर सकते हैं, घर की चीजों में, देने के तरीके में, या उनकी पसंद की चीजें तो खैर बनती ही है, तो वो सारी चीजें अगर हम
0: उसे भी आकर्षक बना के अगर परोसे ना तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते हैं।
1: बिल्कुल, तो दोनों तरफ ही सुधार की जरूरत है।
0: और अब गाना सुन ले।
1: हाँ
0: सुनते हैं गीत।

0: और हमें इंतजार रहता है अपने जन्मदिन का ताकि कितनी अच्छी तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाएं और बड़े आराम से रहें अपने जन्मदिन में, कुछ ना कुछ करते ही हैं सब।
1: पर पुराने जमाने का जन्मदिन वो बिल्कुल भी ऐसा एकदम यानी आज की चकाचौंध वाला नहीं हुआ करता था,
0: हाँ
1: बिल्कुल सादगी से मनाते थे। और मुझे तो याद है नया कि मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो कि सभी लोगों के जन्मदिन ऐसे त्योहार के दिन कैसे आते, किसी का होली
0: हाँ
1: पे, किसी का दिवाली पे, किसी का राखी पे, तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब उस त्योहार के आसपास जब आते थे तो उसी दिन सेलिब्रेट कर
0: तो एक साथ हो
1: देते
0: जाती है, मिठाइयां बन जाती हैं एक साथ,
1: थे
0: ज्यादा मिठाइयां बन जाती होंगी।
1: हाँ तो इस तरह से सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने के जन्मदिन हल्की फुल्की बातें, पुराने जमाने के जन्मदिन पर अक्सर क्या हुआ कर रहा था, आज जब हम अक्सर केक लाते थे उस समय लोगों को प्लेट में रखकर खिलाया करते थे, कोई समोसा खिला दिया तो किसी ने ढोकला खिला दिया,
0: हाँ
1: पार्टी की जगह ऐसे अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दिया करते थे। उसका जो मजा होता था बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, कुछ दोस्त आधा आ जाते थे, हमें कुछ 5 5 10 रुपए वाले जो गेम है टॉयज आते थे वे
0: हाँ
1: दिया करते थे, बहुत मजा आता था, सब मिलकर एक साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे। खास जो बच्चे होते हैं वे, यानी उन्होंने वही लिखा है कि उपहार 5 10 रुपए के उपहार में भी हम खुश हो जाते थे
0: बिल्कुल। हमारे
1: छोटे।
0: एक और साथी लिखते हैं कि पुराने जमाने में जन्मदिन मनाने का उद्देश्य यही था कि बुजुर्ग व्यक्तियों को परिवार में आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा हमेशा ऊंची रहे, इस कारण पिताजी या दादाजी का जन्मदिन बेटे पोते मनाया करते थे। खाना भी अच्छा होता था, खीर हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, खान पान भोजन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन केक जरूर आते हैं, पर मैं खुद कभी भी नहीं खाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के हाईटेक और भव्य समारोहों से बिल्कुल अलग सादगी और अपनत्व से भरे होते थे। उन दिनों जन्मदिन मनाना एक सादगीपूर्ण उत्सव था, जहां महंगे गिफ्ट से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता था। यहाँ पुराने दिनों के जन्मदिनों की हल्की फुल्की यादें हैं कि नया कपड़ा, सादगी से सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, फिर उसके बाद में फिर मंदिर या गुरुद्वारे में माथे टेकना। जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती थी, उसके बाद आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती थी, स्कूल में टॉफी देने का दौर था, फ्रॉक या शर्ट पहनकर जाना, पूरी कक्षा में जो है उन्होंने टॉफियों के नाम लिखे थे, टॉफियां देते थे, और घर का बना केक माँ अपने हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर सजा

0: आकर बनाई जाती थी और फिर गुब्बारे में फुलाकर गुब्बारे से फुलाए जाते थे और गेम खिलाए जाते। शोर शराबा, म्यूजिकल चेयर, पासिंग द पार्सिल जैसे पारंपरिक खेल जहां बच्चों की हंसी और शोर पूरे घर से गूंजता था। और गिफ्ट की सादगी उपहार में किताबें, कलर बॉक्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था।
1: और एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन की भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जन्मदिन देवों के मनाए जाते हैं जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, और स्वयं के अहंकार के चलते पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में ये मनाया जाता है, ऐसे कह रहे हैं। इसके चलते कई उद्योग पनप गए। एक और साथी कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं
2: मना,
1: गुलगुले बनते थे, पड़ोसी महिलाएं और परिवार के लोगों को बुलाकर खान पान होता था, गुलगुले बांटे जाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में केक काटने का चलन नहीं था, सादगी और अपनेपन से मनाते थे। माता पिता बच्चों को सुबह सुबह आशीर्वाद देते, माथे पे तिलक लगाते, मिठाई खिलाकर शुभकामना देते और जिसका जन्मदिन होता सबसे पहले सभी बड़े लोगों को शीश नवाकर प्रणाम करता और नए कपड़े पहनता। घर में खीर पूड़ी या बच्चे के पसंद का कुछ भोजन बनता, अन्य सभी छोटे बच्चों को भोजन करवाया जाता और हंसी खुशी का माहौल परिवार में रहता है। समय दिखावा कम और संस्कार अधिक होते थे। बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और छोटे छोटे पलों की खुशी ही जन्मदिन की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी घर पर ही उनके पसंद का खाना बनाकर उनके दोस्तों के साथ मनाते थे। उनके मित्र भी वैसे ही थे। आज अब बड़े होने पर भी हमारे घर यही क्रम है। वे इसी बहाने हमारे शहर में आते हैं तो फोन पर बातचीत नहीं आते हैं तो फोन पर बातचीत करके बधाई तो हम दे ही देते हैं।
1: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन के बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, मंदिर जाते थे, स्कूल में सभी को छोटी चॉकलेट बांटते थे। लेकिन इनका जन्मदिन आता था 31 मई को वेकेशन में, तो ये सबकी चॉकलेट खा जाते किसी को नहीं देते थे, तो इनका जन्मदिन खास हो जाता है।
0: एक हमारे साथी ने लिखा है कि माँ जो है ना खीर पूरी बनाई जाती थी, उसका मुख्य आकर्षण रहता था, मेहमानों का तांता लग जाता था, पड़ोस के बच्चे रिश्तेदार सुबह से ही बधाई देने आते थे बिना किसी गिफ्ट के, मासूमियत भरी थी। दोस्तों से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, चॉकलेट या इडली स्टिक की खुशबू होती थी और बहुत सारे पार्टी गेम्स भी खेलते थे, म्यूजिकल चेयर वगैरह, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं।
1: और एक साथी कह रहे हैं कि फोटो खींचने के लिए रील वाला कैमरा होता जिसकी फोटो डेवलप होकर कई दिन के बाद आती थी, लेकिन वो पल अनमोल होते थे। ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं था, नई ड्रेस पहनने का उत्साह होता था जो अक्सर पूरे साल के लिए खास होती थी। पुराने दिनों के जन्मदिन में दिखावा कम, अपनापन ज्यादा था। आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में भले ही सेलिब्रेशन शानदार हो गए हों, लेकिन वो पुरानी सादगी और दिल से दी गई दुआएं अब कम ही मिलती है।
0: तो पुराने वो दिन हमें याद करके बहुत सुकून मिलता है और एक गाना सुन के भी हमें सुकून मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो आधी रात तो नहीं हुई है, लेकिन जाने का समय जरूर हो गया है।
1: तो लेते हैं इजाजत आप सभी को, सोनाली पाठक
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: ಗಳಿಯ ಗಣಪತಿ ಆರ್ ಭಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಿರಿಗಂಧ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು.
1: ನಮಸ್ಕಾರ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸೇ ಸಮಾಚಾರ ಸಂಧ್ಯಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ಲವ್ಲಿ ನಿಗಮ್. केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी. आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी. मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी. 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी

0: और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष टी20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाए और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: छह स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक

0: जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
1: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का

0: आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए 21 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center approves mission for cotton productivity with an outlay of over 5,600 crore rupees. Also clears emergency credit line guarantee scheme 5.0 to support businesses manage short-term liquidity. Cabinet gives nod to 2 more semiconductor manufacturing units in Gujarat. Also approves a fair and remunerative price of 365 rupees per quintal for sugarcane for 2026-27 season. Government increases judge strength of Supreme Court by 4 to 37. Prime Minister Narendra Modi condemns attack on UAE's Fujairah, which injured 3 internationals, calls for dialogue and diplomacy to restore peace and stability across West Asia.

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम मंथन में आप सभी का स्वागत है और आज के इस नए अंक में आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर, विश्व में एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभरता भारत। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार परीक्षित निर्भय जी जुड़ चुके हैं। परीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी।
0: परीक्षित जी, जो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल या मेडिकल टूरिज्म है, इसके पूरी दुनिया में बढ़ने के ट्रेंड को देख सकते हैं कि पूरा जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का एक बाजार है, वो आंकड़ा कहता है कि 2022 में जो 115 अरब डॉलर था, वो 2030 तक संभावना है कि 270 अरब डॉलर तक पहुंच जाए। और भारत भी इसमें पीछे नहीं है, भारत भी एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के तौर पर उभर रहा है लगातार। और एक आंकड़ा ये

0: कि 2025 में भारत का मेडिकल टूरिज्म का पूरा अनुमान है वो लगभग 8 अरब डॉलर के आसपास था, जो उम्मीद है कि 2030 तक 16 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच सकता है। तो आप कैसे देखते हैं भारत की तरक्की को और किस तरह से भारत एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में उभर रहा है?
1: जो आंकड़ों की बात है, आंकड़े तो बहुत स्पष्ट है, और जिस तरीके से हम अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे। चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास

0: अपना इतिहास देखेंगे और पिछला कुछ दौर देखेंगे, उसका कंपेयर करेंगे, तो ये हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है कि ये आंकड़ा हम तय समय में हासिल कर पाएंगे।
1: जी,
0: चिकित्सा पर्यटन की बात है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूं।
1: बिल्कुल।
0: दरअसल भारत का जो चिकित्सा पर्यटन का जो इतिहास है वो हम तीन भाग में देखते हैं। पहला भाग है साल जो 2000 है उससे पहले का, उसके बाद का जो इतिहास आता है वो 2000 से 2014 के बाद का आता है, और 2014 के बाद का एक अलग इतिहास रहा है हमारे देश का। चिकित्सा का इतिहास चूंकि हमारा सदियों पुराना है, आयुर्वेदा हो गया, योग हो गया, हम इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। पूरी दुनिया को हमने ही सर्जरी के लिए कल्पना दी, सर्जरी का आचार्य सुश्रुत हमारे ही हैं। एक जब साल दर साल हम इसकी स्थिति देखते हैं तो 1960 से शुरू होता है, मुझे याद है ये बात साल 2000 के आसपास की है, 2001-2002 के आसपास, तब तक चिकित्सा पर्यटन अपनी एक गति से चल रहा था, बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा था, बहुत ज्यादा ऐसी गति नहीं थी, चल रहा था, लोग आते थे, बहुत लिमिटेड आते थे। मुझे याद है 1990 के बाद भारत में सबसे जल्दी से अस्पताल बनना शुरू हुए, उससे पहले इतना बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी अपने इंडिया में नहीं थे, सबसे बड़ा दिल्ली में अपोलो बना था 99 के आसपास। उसके बाद ये चीजें बढ़ी तो 2002 के आसपास कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल ने मिलकर और भारतीय उस समय ये था भारतीय उद्योग परिसंघ, जिन लोगों ने मिलकर उस समय एक मुद्दा उठाना, पॉलिसी वाइज गवर्नमेंट से अपील करना शुरू किया कि भाई चिकित्सा पर्यटन को हमें बढ़ावा देना चाहिए। अब किन्हीं कारणों के चलते सरकार ने उसको संज्ञान तो लिया पर वो जो गति होनी चाहिए वो गति नहीं हुई। अब बात आती है 2014 की। धीरे धीरे जब वक्त 2014 का आया, गवर्नमेंट चेंज हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इन्होंने सबसे पहले सरकार बनते ही सबसे पहले क्या किया कि हेल्थ के साथ साथ आयुष को भी जोड़ा, एक आयुष मंत्रालय शुरू किया। आयुष मंत्रालय शुरू करते करते इनका एक दो साल बाद ही इन्होंने चिकित्सा पर्यटन पे काम करना स्टार्ट किया। चिकित्सा पर्यटन पे काम इस कदर इनका शुरू हुआ कि आज आप देखिए कि भारत जो है वर्तमान में टॉप 10 जो देश हैं चिकित्सा पर्यटन के उनमें से एक है। इसी तरीके से आंकड़े जो आपने बताए इसमें कुछ आंकड़े मैं भी अगर जोड़ू आप जरूर बताऊं तो दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि दुनिया के शीर्ष 20 वेलनेस जो पर्यटन बाजारों में भारत 12वें स्थान पर है। एशिया प्रांत क्षेत्र में बात करें तो टॉप 10 शीर्ष 10 स्वास्थ्य देखभाल स्थलों में से 5वें स्थान पर भारत है। भारत की आज स्थिति ये है कि तकरीबन 80 से ज्यादा देशों के मरीज हर साल आ रहे हैं और उपचार करा रहे हैं यहाँ पर। भारत के लगभग जितने भी शीर्ष प्राइवेट अस्पताल की जो चयन है इन सबके लगभग सभी जगह पे इंटरनेशनल पेशेंट को लेकर रिलेशनशिप मैनेजर भी अपॉइंटेड है। हम दिल्ली में ऐसे कई हॉस्पिटल हैं जहां पर ये लोग कई तरीके की फैसिलिटी हैं, इंश्योरेंस से लेके और सारी चीजें हैं। सरकार भी कई सारी सुविधाएं देती है, जैसे आपको पता हो हाल फिलहाल में कुछ ही समय पहले आयुष वीजा हुआ था, ई मेडिकल वीजा हो गया, जो इनका वीजा का प्रोसेस या बाकी जो डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होती है पेशेंट की, वो मेडिकल वैल्यू ट्रेवल जो है वो भी काफी आसान किया है भारत सरकार ने। साथ के साथ में जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं वो अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दें और उनका इंटरनेशनल लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसको स्वीकार्यता बने, उसके लिए भी सरकार ने गुणवत्ता और मानकीकरण पे काम किया।
1: बिल्कुल।
0: आज इसका जो परिणाम है वो ये कि अधिकांश हॉस्पिटल के पास में NABH यानी इसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स, इनका प्रमाण पत्र हासिल है। ये प्रमाण ये बताता है कि ये अस्पताल ए ग्रेड हॉस्पिटल है, यहाँ पे सफाई व्यवस्था से लेकर उपचार तक सबसे बेहतर ये व्यवस्था है।
1: परीक्षित जी, दो बड़े महत्वपूर्ण सेक्टर होते हैं मेडिकल टूरिज्म में, एक तो होता है डायग्नोस एडवांस सर्जरी और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, और दूसरा है जैसा कि आपने बात की वेलनेस, जिसमें इन दोनों क्षेत्रों में भारत बड़ी तेजी से काम कर रहा है, चाहे वो मेडिकल टूरिज्म हो जिसमें जटिल से जटिल इलाज लेने की ओर लोग भारत की तरफ रुख कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा कि आपने भी बताया भारत लगातार आयुष को बढ़ावा दे रही है जिसमें योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसमें की होम्योपैथी, यूनानी पद्धति, अलग अलग पद्धतियां शामिल हैं, तो हर स्तर पर मेडिकल और वेलनेस पर भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है, तो कैसे आप देखते हैं कि इन दोनों क्षेत्रों में प्रगति से पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर आकर्षित हो रहा है?
0: बिल्कुल हो रहा है, उसकी वजह ये भी है। देखिए, स्वास्थ्य को या चिकित्सा को आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक से नहीं देख सकते, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें चिकित्सा उपकरण भी आते हैं, इसमें इलाज भी आता है, इसमें जांच भी आती है, इसमें इलाज के भी कई सारी विधियां आती हैं, और बात यहाँ सिर्फ एलोपैथी या आयुर्वेदा की नहीं है। आप ये देखेंगे कि भारत सरकार ने होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, आयुष को मतलब इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत अप्रोच के साथ में जो पहल की है। आज हम किसी भी एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां पे हमें सिर्फ एलोपैथी नहीं, हमको आयुष का भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है, हमको हर

0: तरीके की पैथी है एक ही छत के नीचे, चूज हमें करना है कि हमको किस पैथी में जाके अपना उपचार करना है। ये अप्रोच बहुत ही अच्छी अप्रोच है और मुझे नहीं लगता, मैं इतनी कंट्री में मैंने देखा है कि इस तरीके की अप्रोच दूसरे देशों में है। दूसरी बात, सरकार ने अभी कुछ समय पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी चलाई थी चिकित्सा पर्यटन को लेकर, मुझे बहुत वो पसंद आई। उसका था हील इन इंडिया एंड हील बाय इंडिया, मतलब भारत से मरहम लीजिए और भारत में मरहम लीजिए, दोनों बातें। तो चिकित्सा पर्यटन के नाते आप भारत में आइए, यहाँ उपचार कराइए, अच्छा गुणवत्ता वाला उपचार लीजिए, और भारत से मरहम का मतलब भारत के जो स्टाफ है, भारत का जो डॉक्टर है, भारत के जो नर्स हैं, उनके देशों में अपॉइंट करने के लिए, तैनात करने के लिए उन देशों से वो करा। तो ये योजना जो है कि मतलब सिर्फ हम अपने घर में ही नहीं दे रहे हैं, हम आपके घर में आके भी आपको इलाज देने की व्यवस्था कर रहे हैं
1: निश्चित तौर पर। और भारत में जो मेडिकल वैल्यू टूरिज्म बढ़ रहा है, उसका एक और अहम कारण ये माना जाता है कि भारत में चिकित्सा को लेकर एक बहुत पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसा कि आपने भी अस्पतालों डॉक्टरों का जिक्र किया, तो आंकड़ा कहता है कि भारत में लगभग 70,000 के आसपास अच्छे अस्पताल हैं, जिसमें कि लगभग 43,000 के आसपास निजी अस्पताल और 25,000 से 26,000 के आसपास सरकारी अच्छे अस्पताल हैं, और डॉक्टरों की संख्या भी 12,00,000 से ऊपर है जो प्रशिक्षित और सर्टिफाइड डॉक्टर हैं। इसके अलावा भारत में जो चिकित्सा शिक्षा है, मेडिकल एजुकेशन है, उसका भी एक बहुत भरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कैसे भारत का जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इकोसिस्टम है, वो भारत को एक दुनिया में बड़े मेडिकल हब के रूप में बनाता है, और आगे आने वाले समय में इसके और बढ़ने की संभावना है। जैसा कि सरकार भी मेडिकल एजुकेशन पर ध्यान दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, तो कैसे आने वाले समय में इस इकोसिस्टम के और मजबूत होने से जो भारत का एक मेडिकल हब बनना है, मेडिकल टूरिज्म बनने की दिशा में एक कदम है, वो और आगे बढ़ेगा।
0: जी जी, देखिए अगर आप इसको दूसरे तरीके से देखें तो आजाद भारत का इतिहास कोई बहुत बड़ा नहीं है। हमें आज आजाद हुए 70-75 साल हुए हैं, और हमने जो अप्रोच ली है ये पिछले 10-12 साल की अप्रोच है, और इस 10-12 साल की अप्रोच में हम देखिए कहाँ आके खड़े हो गए, टॉप 10 शीर्ष 10 देशों में हम शामिल हो गए। इसी अप्रोच के साथ अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो ये पूरा भरोसा है कि हम पहले या दूसरे स्थान पर होंगे। उसकी वजह हमारे पास में क्वालिटी है, हमारे पास में क्वांटिटी है यानी संख्या है डॉक्टरों की, हमारे पास में इंस्टीट्यूट है। देश में जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 750 के आसपास मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट और सरकारी, जो कि ये शायद दूसरा या तीसरा स्थान आता है पूरे दुनिया में भारत का। जो हम डॉक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सबसे ज्यादा MBBS सीटें हमारे पास में है, और आयुष और इसको लेके भी हमारे पास में सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो कहने का मतलब हम स्टाफ में भी ध्यान दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू वो पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिससे बाहर के मरीज जो यहाँ आ रहे हैं उनको सहूलियत हो। जैसे कई देशों में अभी देखते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, वहां कई तरीके की दिक्कतें आ रही है ना, ईरान और इराक और अफगानिस्तान, ये तीन कंट्री ऐसी है यहां के लिए हमने हमेशा ही अपना दरवाजा खोल के रखा है। और जो मेडिकल टूरिज्म की हम बात करें 2014 के बाद से, तो आप यकीन नहीं मानेंगे सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक सर्जरी हुई है, जो मेजर सर्जरी हुई है, जो मतलब करिश्माई सर्जरी बोलेंगे, वो सबसे ज्यादा इराक और ईरान और अफगानिस्तान के लोगों की हुई है। किसी मैंने देखा था, ये दिल्ली में महसूस भी किया है कि कोई वहां पर जब जंग हुई, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, जब वो लोग आए और उनको हमने वो सब चीजें दी है, नए ऑर्गन डेवलप करके उनको दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ, और वैसी सर्जरियां शायद कभी हुई भी नहीं थी वर्ल्ड में, तो हमारे पास वो क्षमताएं हैं।
1: और अभी अगर हम इस बार के बजट की ही बात करें परीक्षित जी, तो भारत सरकार ने भारत में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिहाज से, या भारत में जो चिकित्सा का पूरा इकोसिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। इसमें सबसे बड़ी घोषणा तो ये थी कि भारत में 5 बड़े रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, जिसमें कि रिहैबिलिटेशन से लेकर रिसर्च और इलाज तक की पूरी सुविधा उपलब्ध होगी। ऐसे ही बड़े अखिल भारतीय आयुर्वेद केंद्र की भी शुरुआत करने की घोषणा है, और साथ ही सरकार ने जो अलग दूसरे देशों से आने वाले नागरिक हैं उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाने की जो घोषणाएं की हैं, जो कार्यक्रम चलाए हैं, और जो भी तमाम प्रयास हैं, उनसे कैसे आने वाले समय में और भी ये मेडिकल टूरिज्म का एक पूरा ढांचा है और मजबूत हो रहा है।
0: बाहर से जो पेशेंट आ रहा है वो इंडिया आ रहा है, तो उसको हमें एक ऐसा माहौल देना पड़ेगा कि उसके लिए सुरक्षित, गुणवत्ता वाला, आसान और सस्ता, ये एक मैसेज देने की सरकार कोशिश की, और सरकार सक्सेस भी रही, सफल भी हुई है इसमें। जो बजट पर जिस तरीके की उन्होंने घोषणाएं की हैं, इससे बहुत फायदा भी मिला है। इनका डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मोर देन 40% इंक्रीज हुआ है इनका चिकित्सा पर्यटन का जो डेटा है, और मतलब 40% से ज्यादा इजाफा हुआ है बाहर से आने वाले मरीजों के संख्या में। तो जब सहूलियत होती है तो हर बंदा उसको अप्रोच को स्वीकार करता है, सरकार भी उसी दिशा में जा रही है और बहुत अच्छी दिशा है ये। और मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि इसके परिणाम बहुत जल्दी

0: मतलब 2030 को मैं बहुत ज्यादा आगे बता रहा हूँ, ये 2027-28 तक ही आप देखिएगा कि हमारा जो डाटा होगा, हमारे पास जो पेशेंट की संख्या होगी, हमारे पास जो सुविधाएं होंगी, उनमें बहुत तेजी से बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने एक और अच्छा काम किया है कि अलग अलग कंट्री में अपने सेंटर भी खोले हैं, चाहे वो सरकार के जरिए हो या प्राइवेट हॉस्पिटल खुद डायरेक्ट वहाँ सेंटर खोल रहे हैं। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है कि हम आपके घर पहुंच गए, वहां वो अप्रोच कर रहे हैं, वहां वो बता रहे हैं देखिए आप भारत आइए तो ये तरीके का आपको इलाज मिलेगा, इतना सस्ता मिलेगा। क्यों? क्योंकि आज भी भारत में अमेरिका या बाकी कंट्री का तुलना करेंगे तो भारत में इलाज वाकई सस्ता है। डॉलर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो भारत का इलाज बहुत सस्ता है। आज भी भारत में 3-4 लाख रुपए में हार्ट की सर्जरी हो रही है, जो कि अमेरिका में उसी हार्ट की सर्जरी का मुझे अच्छे से याद है कि इसके लिए 12-15 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता है इंडियन रुपीज के हिसाब से। तो उस हिसाब से उन पेशेंट के लिए भारत सबसे सस्ता और किफायती है।
1: और इसका एक आर्थिक पक्ष भी अगर हम परीक्षित जी देखें, तो जब एक पर्यटक आता है तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो ऐसे ही अगर मेडिकल टूरिज्म भारत में बढ़ता है तो उससे निश्चित तौर पर भारत की जीडीपी भी बढ़ेगी। और पर्यटन मंत्रालय का आंकड़ा भी है 2024 का कि मेडिकल टूरिज्म की भारत में जो जीडीपी में योगदान है वो 5% से ज्यादा रहा है। तो कैसे आगे आने वाले समय में आर्थिक तौर पर भी भारत का बढ़ता हुआ मेडिकल टूरिज्म फायदा पहुंचाएगा?
0: देखिए, इस आंकड़े को अगर सजीव तरीके से देखना है तो खास तौर पर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो जो भी बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे मैं आपको गुड़गांव का बता सकता हूँ, दिल्ली का बता सकता हूँ कि गुड़गांव में अगर मेदांता अस्पताल है तो उसके आसपास जब भी आप जाएंगे, देखेंगे, समीक्षा करेंगे तो आपको पता चलेगा कई तरीके के पीजी, कई तरीके के जो है रूम रेंट पे दिए जा रहे हैं, किराए पे दिए जा रहे हैं, कई तरीके के फ्लैट दिए जा रहे हैं और वहां पे इंटरनेशनल पेशेंट रहते हैं, बकायदा सेफली है, सुरक्षा महसूस करते हैं। प्लस वहां जो आसपास के जो दुकानदार हैं उनका खाना पीना, वो सारी चीजें जो वो लोग आते जाते हैं, ऑटो वगैरह, तो मतलब कुल मिला के अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो जीडीपी को बहुत तेजी से फायदा हो रहा है।
1: इसीलिए सरकार ने हील इन इंडिया नाम से भी पूरा मिशन चलाया हुआ है कि भारत ग्लोबल हीलिंग हब बने, यानी लोग यहाँ आकर न सिर्फ अपना इलाज करवाएं बल्कि अपने शरीर को तरोताजा करके मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ करके लौटें।
0: बिल्कुल।
1: तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमने इस चर्चा में बात की भारत के बढ़ते मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की, तो हमें अपेक्षा है कि आने वाले समय में जिस गति से हम सरकारी योजनाओं और सरकार के समर्थन से भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसमें और आगे आने वाले समय में एक बहुत सकारात्मक बढ़ोतरी होगी। और अभी जैसा कि हमने कार्यक्रम में चर्चा भी की कि भारत 10वें पायदान पर आता है मेडिकल टूरिज्म में, जो आगे आने वाले समय में मेडिकल टूरिज्म के पायदान में और ऊपर आएगा और भारत इस दिशा में और अग्रसर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद परीक्षित जी, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने इस विषय पर हमारे साथ चर्चा की, बहुत सारी जरूरी जानकारी हमें साझा की।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। हमें अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।